श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरै सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणम् प्रपद्ये सत्त्वोत्तरै सतत सेव्य पदाम्बुजेन संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन सौम्योपयन्तृ मुनिना मम दर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेश चरणौ

0: ताज पहना दे, वो खासदार को चाहे तो ताज पहना दे, वो खासदार को चाहे
1: तो ताज पहना दे,
0: वो अश्वार मौसम में एक फकीर ला दे। जो भटकते हैं, जो भटकते हैं नहीं पाते रास्ता कोई, उन्हें एक इशारे से जरा गौर कीजिए, उन्हें एक इशारे दे, उन्हें
2: तो सुनिए ना।

0: मेरे घुटे हुए अरमानों को एक बरकत दी।
1: कौन है जिसने मुफलिसी मुझसे छिनाकर मुझे आबाद किया।

0: तुम प्यारा सब उदाहरण खसम हमारा सिमर नाम पुनी सब इच्छा जन नानक पैज रखाई है। मारू सोल है महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पै एकत्रा करते भोग बिलासा है। जो पिर करै सो तन तत् मानै तिर तनै सिंगार रखै संगानै मिल एकत्र वसै दिन राती प्रयो दे तनै दिलासा है। धन मांगै प्रयो बोबे तावै जो पावै सो अण दिखावै एक वस्त को पहुँच ना साकै तन रहती भूख प्यासा है। तन करै बिनौ दो कर जोरै प्रे परदेस ना जाहो वसो कर मोरै ऐसा बणज करो गृह पीतर जित उतरै भूख प्यासा है। सगले कर्म धर्म जुग साधा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पही कृपा नानक सतसंगे तौ धन पिर आनंद उलासा है। तन अंधी पिर चपरसियाना पंच तत्कार चन रचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है। तन कह तू वस मैं नाले प्रे सुखवासी बाल गोपाले तुझे बिना हो कित ही ना लेख वचन देहे छोड़ ना जासा है। फिर कहया हो हुक्मी बंदा ओह पारो ठाकरो जिस कारण ना शंदा जिचर रख है तिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊट सिधासा है। जाओ प्रे बचन कह तन साचे तन कछु न समझे चंचल काचे बहुर बहुर पिर ही संग मांगे ओ बात जाने करहासा है। आईया गया पिरों बुलाया ना तन पुछी ना मता पकाया ऊट सिधायो छूटर माटी देख नानक मिथन मुहासा है। हरे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत निगुरे गल जमफासा है। मनमुख आवै मनमुख जावै मनमुख फिर चोटा खावै जितने नरक से मनमुख भोगै गुरमुख लेप न मासा है। गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावै जे प्रपै राया सदा आनंद करे आनंदी जे सिर पाओ पया गल खासा है। हाँ बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विछड़ ना कत ही जासा है। गुण निदान किशकीम ना पाई घट घट पूर रहे हो सब ठाई नानक शरण दीन दुख भंजन हौरेण तेरे जो दासा है।
1: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
2: Radio Sai now brings you some devotional Christian music.